0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी। I love variety.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of

0: 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज, वो शो जो वीकेंड पर आपका काफी सारा हार्ड अर्न टाइम सेव करता है, क्योंकि वन थिंग दैट ऑल ऑफ अस आदत से मजबूर करते हैं, यार वीकेंड आ गया है तो कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। ओटीटी पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, फिर स्क्रोलिंग करते करते करते करते करते रिव्यूज देखते देखते देखते देखते आपका बहुत सारा समय निकल जाता है, और ये समय ताकि आप सेव कर सकें, क्योंकि आखिरकार हम लोग बहुत मेहनत के बाद इस वीकेंड को पाते हैं मेरे वीकडे वॉरियर्स। So I don't want you to waste even a single second. So आज what's on the menu card? We're going to talk about Adarsh Bal Vidyalay. जब भी TVF कोई शो करता है तो एक generic standard तो होता ही है, लेकिन should you watch it, should you not watch it, stream it or skip it, what are the good things, bad things, all that is coming up in just a while right here on The Big Binge on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: RDB.

0: This is the Big Binge with me, Sid, on Big 106.2, the beat of Bollywood. Aaj hum baat kar rahe hain about Adarsh Bal Vidyalay, and it's that show on Amazon Prime Video. It takes us to Tinki Toli on the outskirts of Delhi. This is what the trailer sounds like.
1: And action.
2: कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है और आज हम खड़े हैं ऐसे ही बदबूदार कीचड़ में। ये है आदर्श बाल विद्यालय।
3: चुप! अपने हेडमास्टर को बुलाओ।
4: सर, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, 49 नॉट आउट सर।
5: इस साल 10th बोर्ड्स में दिल्ली के जिन 10 सरकारी स्कूलों का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा उन स्कूल्स के हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भेजा जाए।
4: इंग्लैंड वाला कैम्ब्रिज।
0: इसके बाद के मेनन की जिंदगी पलटती है और कुछ स्टूडेंट्स की जिंदगी भी। हिज लाइफ गेट्स अ बिट ऑफ पर्पस एंड देन व्हाट हैपेंस। अगर पंचायत वेंट बैक टू स्कूल इट माइट लुक समथिंग लाइक आदर्श बाल विद्यालय। मोर कमिंग अप ऑन दिस शो, द गुड थिंग्स, द बैड थिंग्स एंड फाइनली द वर्डिक्ट। शुड यू स्ट्रीम इट और स्किप इट राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड।

This is the Big Binge with me, Sid, on Big 106.2. आज हम बात कर रहे हैं about आदर्श बाल विद्यालय. ये नया 7 episode series है Prime Video पर. It takes us to Tinki Toli नाम की एक जगह है on the outskirts of दिल्ली. एक government school है वहाँ पर जो कि सिर्फ अपने नाम से ही आदर्श है. आदर्श बाल विद्यालय की बिल्डिंग इज क्रम्बलिंग. द स्टूडेंट्स आर इम्पॉसिबली बदमाश एंड जो टीचर्स हैं दे मोस्टली गिवन अप. हेडमास्टर जो है प्लेड बाय के मेनन, ये ही परफेक्टली हैप्पी कि पढ़ाई की जगह अगर क्रिकेट खेला जाए बच्चों के साथ. जब फ्री टाइम बच्चे मांगते हैं तो दे देते हैं. ही हैज नो रियल पर्पस इन लाइफ अंटिल ही डिस्कवर्स के जो प्रिंसिपल्स ऑफ दिल्लीज बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, दे कुड गेट सेंट टू कैम्ब्रिज फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विद देयर स्पाउसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, स्पाउस के साथ, प्लस वन के साथ. जैसे हम आपको टिकट नहीं देते, कपल टिकट देते ना, वैसे कपल पास मिलता है टू कैम्ब्रिज. सडनली हमारे बहुत ही रिलैक्स प्रिंसिपल इज नॉट सो रिलैक्स्ड एंड ही डिस्कवर्स एन एम्बिशन. उसके बाद जो होता है ना, इज एसेंशियली अ बंच ऑफ फ्लॉड टीचर्स ट्राइंग टू फिक्स अ स्कूल जो कि सिस्टम खुद भूल गए हैं. स्कूलों के हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. ये फनी है, वॉर्म है एंड ओकेजनली इट्स क्वाइट शार्प. जैसे कि TVF के बाकी शोज होते हैं ना, ये सोसाइटी पे टिप्पणी भी करता है लेकिन इन अ वेरी टंग इन चीक काइंड ऑफ मैनर. इट्स वेरी वेरी फेमिलियर. कमिंग अप, व्हाट आर द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ आदर्श बाल विद्यालय राइट हियर ऑन द बिग बिंज.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

दिस इज द बिग बिंज विद मी सेड रेडियो ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. आदर्श बाल विद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं. आई टोल्ड यू अबाउट द गुड थिंग्स, हियर आर द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट द शो अकॉर्डिंग टू मी. द नेगेटिव्स, माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आदर्श बाल विद्यालय ऑन अमेज़न प्राइम इज के यार हम ये देख नहीं चुके हैं. पंचायत में हमने डिसफंक्शनल विलेज देखा है, देख चुके हैं. ग्राम चिकित्सालय में डिसफंक्शनल गवर्नमेंट क्लिनिक हम देख चुके हैं. मामला लीगल है में क्योटिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम देख चुके हैं. नाउ हियर इज अ डिसफंक्शनल गवर्नमेंट स्कूल. डिफरेंट बिल्डिंग लेकिन DNA जो है वो काफ़ी सिमिलर है. यू कैन ऑलमोस्ट सी द फॉर्मूला. मतलब एक चीज़ है कि फॉर्मूला हो, अगर हो भी तो दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो दिखती है कहीं कहीं पे. एक्सेंट्रिक लोकल कैरेक्टर्स, स्लाइटली ब्रोकन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, छोटे छोटे सोशल इश्यूज हैं, वार्म जोक्स, इमोशनल मोमेंट्स एंड नेक्स्ट एपिसोड. और कभी कभी ना ये शो जो है ट्राइज अ लिटिल टू हार्ड टू बी फनी. जो ह्यूमर है इट इज़ नॉट वेरी एफर्टलेस. कुछ कॉन्वर्जेशन हैं दे फील लेस लाइक रियल पीपल टॉकिंग एंड मोर लाइक राइटर्स जबरदस्ती के पंचलाइन मारते हुए. 7 एपिसोड्स ऑल्सो फील स्लाइटली जेनरस. यू नो इट्स वन मोर एग्जाम्पल कि यार इसकी फिल्म बना देते ना तो ज़्यादा अच्छा होता है. इट स्ट्रेचेज एट सर्टन प्लेसेज वेयर द स्टोरी सिंपली जस्ट स्टॉप्स मूविंग. चार्मिंग है बट आई डोंट थिंक इट हैज़ दैट पंचायत लेवल का एफर्टलेसनेस इन दिस फर्स्ट सीजन. समटाइम्स यू कैन सी द चॉक मार्क्स विद राइटर्स हैव ड्रॉन द जोक राइट. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ शो. अगली बार व्हेन आई कम बैक फाइनली व्हाट इज द वर्डिक्ट. यार ये सब ज्ञानबाजी तो हो गई लेकिन सिड इस शो को देखें कि नहीं देखें. कमिंग अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

It is verdict time on the Big Binge with me, Sid. आदर्श बाल विद्यालय के हम लोग बात कर रहे हैं. बताओ सिड, अब स्ट्रीम करें कि स्किप करें? Amazon Prime का ये 7 एपिसोड सीरीज है. I'd say marginally in favor of stream it. लेकिन गलती लोग क्या कर रहे हैं, इसको पंचायत से कंपेयर कर रहे हैं. अगर आपने ये गलती की पंचायत के साथ कंपेयर किया तो ये शो खरा नहीं उतरेगा आपकी उम्मीदों पर मेरे भाई. लेकिन अगर इफ यू आर एबल टू रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन ऑफ कंपेयरिंग इट टू पंचायत, देन यू माइट एंजॉय दिस शो. द सेकंड थिंग इज, अगर आपने पेशेंस दिखाया देन ये शो आपको काफी अच्छे अच्छे रंग दिखा सकता है. गिव इट 2 एपिसोड्स. हाँ, पहले 2 एपिसोड तक मतलब क्लासरूम का फर्नीचर ही सेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही 2 एपिसोड होते हैं यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स, देन इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स पेइंग ऑफ बाय एपिसोड 3. तीसरी बात, इट इज फनी विदाउट बीइंग लाउड. इट्स गॉट अ टेरिफिक एंसेंबल. एक्टिंग बहुत ही अच्छी है. एंड जैसे यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, ऑलरेडी इट इज सच अ रिलेटेबल टॉपिक दैट यू कैन हार्डली गो रॉन्ग. इज इट ग्राउंड ब्रेकिंग? नो. इज इट अ लेक्चर इन एवरी एपिसोड? क्योंकि एजुकेशन की बात हो तो वो टेम्पटेशन होता है ना कि चलो लेक्चर ही दे देते हैं, क्योंकि क्लासरूम में टीचर लेक्चर दे रही है, शो में हम लोग लेक्चर देते हैं. ये बिल्कुल नहीं हो रहा. सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस शो. लेकिन वॉर्म स्मॉल टाउन एक्सेंट्रिक गवर्नमेंट ऑफिस जॉनर अगर आपको पसंद है देन एब्सोल्युटली गो फॉर इट. आईड से आउट ऑफ 5 इन फेवर ऑफ स्ट्रीमिंग इट, आईड गिव इट अ 3.5 स्टार. सो yeah, that's my verdict. Whether you agree with me or not, please do let me know. You can always leave a message on our Insta via 106.2 Big FM. That's our Insta handle. I'm Sid Seth, SIDSETH, signing off from the Big Binge. In case you have a recommendation, कोई अगर show आपको समझ में नहीं आ रहा कि देखें कि नहीं देखें, you can always send that recommendation as well. एक बार फिर हमारा Insta handle 106.2 Big FM.

0: Orchid Scraps, MSN Chats and Bollywood Bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. All my favorite music.
1: Turn it up.
0: The 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
2: Happy weekend. Yes, playing you the top 40 biggest hits of the week with the Big Bollywood Countdown. Mansi, the next 3 hours, the 40 chart busters, the bangers of the week. Aap yahan sunne wale hain. Starting with gana number 40 from Baby Do Die Do, jiska main OTT pe release hone ka intezaar kar rahi hoon. Saqib and Huma, siblings, inhone hi produce kari hai movie and some great reviews coming in. Huma Qureshi ki bahut tareef ki ja rahi hai for Baby Do Die Do. And I have to say, in the world of recreating music, काफी कमाल गाना इन्होंने चूज करा है टू रिक्रिएट फॉर द मूवी. इस हफ्ते नंबर 40 पर. एंड जैसा मैंने कहा कि बॉलीवुड इज लविंग द ट्रेंड ऑफ रिक्रिएटिंग द 90s के गाने. एक और ऐसा गाना जो इस हफ्ते नंबर 39 पे है, ओरिजिनली फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर 1, डेविड धवन की ही मूवी, रिक्रिएट भी हुआ है डेविड साहब की ही मूवी में फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. जब ये गाना रिलीज हुआ था, देयर वाज अ सोशल मीडिया बज, इट ट्रेंडेड ऑनलाइन, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर कंप्लेनिंग कि नहीं ओरिजिनल गाना अच्छा है, ओरिजिनल गाना अच्छा है. बट दिस इज नॉट फॉर यू एंड आई, दिस इज फॉर द जेंजीज एंड दे आर लविंग इट. एंड दैट इज व्हाई स्टिल ऑन नंबर 39 दिस वीक ऑन द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन.
0: नंबर 40.
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: you're looking for motivation to hit the gym, I think Kriti Sanon in Cocktail 2 is that motivation. Playing you the top 40 biggest hits of the week. Here you have Big Bollywood Countdown. Hope you're enjoying your weekend. Keeping you company, I'm Mansi. And Cocktail 2, yes, directed by Homi Adjania, co-written by Love Ranjan and Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna in the lead roles. Story hai Kunal aur Diya ki, jo college sweethearts hain. Long distance relationship hota hai inka test jab inke beech aati hai Ali. Ali is played by Kriti Sanon and kaafi chaos, kaafi complicated love triangle ho jata hai. बेसिकली वो आती है कुणाल की लॉयल्टी टेस्ट करने, बट आई थिंक शी फॉल्स इन लव विद कुणाल. सो आई एम वेटिंग अगेन इस मूवी के भी OTT रिलीज का. द मूवी वॉज शॉट इन इटली, अ प्लेस दैट आई टोटली लव. इस हफ्ते कॉकटेल 2 से वी गॉट जक्से लार्ज ऑन नंबर 38. मूविंग ऑन टू 37, पति पत्नी और वो दो, जो OTT पे है. एंड आई हैव रिकमेंडेड दिस मूवी इनफ. And I have to say, brilliant music. Pati, Patni aur Wo Do. Movie to hai hi achhi, entertaining hai. Music bhi kamal hai. Tanish Bagchi, Fahim Abdullah. This week on number 37. And of course, a movie jiska hum sab badi bekarari se intezaar kar rahe hain. Main millennials ki baat kar rahi hoon. Releasing on the 14th of August, Imran Hashmi making a comeback from Awarapan 2 this week on number 36.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने.
3: दो या चार?
2: चार.
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में.
3: चार या
2: पांच? पांच.
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
1: द बिग बिंज विद सिड. सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 37.

number 31 this week, the title track from Chand Mera Dil. Playing in the top 40 biggest hits of the week, you have Big Bollywood Countdown right here on Big 106.2. मैं हूँ Mansi. To be honest, बहुत उम्मीदें थी चांद मेरा दिल एल्बम से, मूवी से. The trailer looked very, very promising. The movie follows the journey of Arav and Chandni, two engineering students in Hyderabad, जिनका कॉलेज रोमांस फेसेस हार्श रियलिटीज, करियर एम्बिशंस, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अडल्टहुड. बट लाइक आई सेड, हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी के. म्यूजिक से भी बहुत ही सोलफुल साउंड ट्रैक था, बट टू बी ऑनेस्ट इतना चल नहीं पाया. इट वॉज कम्पोज बाय सचिन जिगर, लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, एंड कमाल गाने हैं इंक्लूडिंग द टाइटल ट्रैक और खासियत विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. एंड आई फील ऐसे गाने ना कई साल बाद सडनली समबडी इज गोना पुट अप अ रील एंड इनका रीबर्थ होगा, दिल गो वायरल अगेन. बट फिलहाल वी गॉट चांद मेरा दिल ऑन नंबर 31. मूविंग ऑन नंबर 30 पर फ्रॉम विशाल भरद्वाज की ओ रोमियो.

0: ऑन नंबर 22 ओरिजिनल गाना दिल का है, आमिर खान माधुरी दीक्षित, रिक्रिएटेड फॉर पति पत्नी और वो दो।
1: दिल में है तूफान भरा,
0: the top 40 biggest hits of the week. Stay right here. Ye hai Big Bollywood Countdown.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 23.

0: नंबर 17 अ मूवी जिसका हम बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट आवारा अपन 2. Playing in the top 40 biggest hits of the week. Ye hai Big Bollywood Countdown. And for us millennials, this is going to be pure nostalgia. Imran Hashmi making a comeback. In fact, last week, iska trailer release hua hai. Filhal, number 1 trending pe hai. And I have to say, what a brilliant trailer. Shabana Azmi, Imran Hashmi, Disha Patni.
1: कितनी हसीन शक्ल है. मौत से मिलने का शौक है तुम्हें.
2: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
0: ऐसा लग रहा है कि हमारी जवानी वापस आ गई है. दिस मूवी विल ईट 100 सैयारास, आई एम टेलिंग यू. व्हाट अ कमबैक. कांट वेट फॉर 14th ऑफ ऑगस्ट. कांट वेट फॉर आवारा अपन 2. इन फैक्ट जिस गाने का हम इंतजार कर रहे थे वो भी रिलीज हो गया. एंड यू गेट टू हियर दैट सॉन्ग इन द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन टुडे. बट फिलहाल मूविंग ऑन टू नंबर 18, वी हैव गॉट एआर रहमान, इरशाद कामिल, दिस वन फ्रॉम तेरे इश्क में. नंबर 16.

0: again, like I said, Bollywood and their obsession to recreate iconic 90s ke gaane. Original gaana Gulam se recreated for Bhai Tera Star hai. इस हफ्ते नंबर 8 पे यह है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन कीपिंग यू कंपनी ओवर द वीकेंड. मानसी, दिस इज बिग 106.2
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जिल
2: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट
1: वीकडेज 9 PM टू 12 AM ऑन बिग 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 9.

कंसिस्टेंटली नंबर वन पे ये गाना था दो हफ्ते, फिर आया नंबर दो पे, एंड इस हफ्ते नंबर तीन पर फ्रॉम धुरंधर टू, दैट वाज आरी आरी. Right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. I'm Mansi, and every weekend I play you the top 40 biggest hits of the week. It's time for top 2. Alright, number 1 se phisal ke number 2 pe aa chuka hai. Cocktail 2 se a song that I am still obsessed with. I think one of the best original gana of recent times.

राघव चैतन्य, साथ में अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम का म्यूजिक, बट माशुका की जगह इस हफ्ते नंबर वन पोजीशन पे ले ली है तनिष्क बागची का ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड गाना. वेल, दिस सॉन्ग ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड ऑफ कोर्स द ओरिजिनल सिंगर्स अलका याग्निक एंड इला अरुण. देव री रिकॉर्डेड द अपडेटेड रेंडिशन ऑफ दिस गाना. ओरिजिनली गाना है करण अर्जुन से, रिक्रिएट किया है तनिष्क बागची ने. इस हफ्ते नंबर वन पोजीशन पे. इसी के साथ टाइम फॉर मीन आर से बाय बाय. इनफैक्ट अगर आप भी कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं, यू फील ये गाना नंबर वन पे नहीं नंबर टू पे होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट हैपेंस ऑन आर इंस्टाग्राम. यू कैन गेट इन टच विद अस 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी अमानसी टॉकिंग. एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Number

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी है। भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती। तुम
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: Y2K hits, indie gems, Bollywood gold. Your kind of playlist. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: नमस्ते,
2: ओला,
1: अस्सलाम वालेकुम,
3: बोंजूर,
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: नमस्ते.
2: ओला.
1: अस्सलाम वालेकुम.
3: बोंजूर.
4: नी हाओ.
3: डिड यू नो नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: नमस्ते.
2: ओला.
1: अस्सलामुअलैकुम.
3: बोंजूर.
4: नी हाओ.
3: डिड यू नो नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.

Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.